0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, ईश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार के धन संपत्तियों से विभूषित किया है। हमारे लिए ईश्वर से मिली धन संपत्तियाँ हमारी योग्यताएँ और हमारी क्षमताएँ हैं, जिनके द्वारा हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए फल उत्पन्न करने को कहे जाते हैं। ईश्वर हमें अपने हृदय के भंडार से उत्तम चीज़ों को निकालकर उन्हें जन सामान्य की भलाई हेतु उपयोग करने को कहते हैं, और ऐसा करने के द्वारा हम अपने जीवन के कार्यों द्वारा ईश्वर की सेवा, पूजा और महिमा करते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 17वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार में हमारे लिए विभिन्न दृष्टांतों की चर्चा की गई है, जिनके द्वारा यीशु ख्रीस्त हमें स्वर्ग राज्य के रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए अक्षय निधि है। हमें ईश्वर उस मूल्यवान अनंत निधि की खोज करने का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम उसी के लिए बनाए गए हैं। आइए हम ईश वचनों का श्रवण करते हुए अपने जीवन के आत्म परख करें कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ईश्वर ने हमें अनमोल खजाने के रूप में सौंपा है। वे कौन कौन से अच्छी बातें हैं जिन्हें ईश्वर ने मोतियों के रूप में हमारे हृदय रूपी खेतों में गाड़ कर रखा है। क्या हम अपने हृदय की गहराई में उतरते और उन कीमती मोतियों को खोजने का प्रयास करते हैं? हम अपने हृदय रूपी भंडार से किन किन चीज़ों को निकालते और उन्हें ईश्वर की महिमा हेतु लोगों की सेवा में उपयोग करते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है।
0: श्रोताओं, ईश्वर के सुमधुर वचन हमें अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीजों को खोज कर निकालने में मदद करें, जिससे हम उनके उपयोग द्वारा ईश्वर की बनाई गई सृष्टि और ईश प्रजा की सेवा हेतु उनका व्यय कर सकें, व्यय कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें, जिनके लिए हमें यह सुंदर जीवन दिया गया है। श्रोताओं, राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए एक अनमोल दिव्य खजाने, विवेकपूर्ण समझदारी की चर्चा करता है, जिसकी मांग राजा सुलेमान अपने लिए ईश्वर से अपने को सौंपी गई ईश प्रजा की सेवा हेतु करते हैं, देख रेख हेतु करते हैं। राजा सुलेमान की मांग से ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें वे सारी अन्य चीज़ें प्रदान करते हैं जो उन्हें राजपाट संचालन हेतु जरूरी था। यहाँ गौर करने की एक बात यह है कि राजा सुलेमान अपनी प्रसिद्धि और ख्याति हेतु विवेक की मांग नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी प्रजा लोगों की सेवा हेतु, लोगों की देख रेख हेतु यह मांग करते हैं, जिससे वे अपनी प्रजा का उचित न्याय कर सकें। राजा सुलेमान की मांग ईश्वर को प्यारी लगती है और वे न केवल विवेक बल्कि अन्य सारी आशीष और कृपाओं से उन्हें विभूषित करते हैं। इस तरह राजा सुलेमान की मांग में हम सेवा के भाव को पाते हैं, जिसमें हमारे लिए उनकी नम्रता प्रकट होती है। इस भांति राजा सुलेमान ईश्वरीय प्रज्ञा से पोषित अपनी प्रजा की सेवा और देख रेख विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, जो उन्हें ख्याति और प्रसिद्धि प्रदान करती है, जिसकी चर्चा हम राजाओं के ग्रंथ में पाते हैं। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वरीय अनुग्रह की चर्चा करता है, जो सदैव हमारे जीवन में बना रहता है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने कार्यों के लिए चुना और बुलाया है। ईश्वर ने जिन लोगों को अपनी प्रेरिताई हेतु नियुक्त किया और बुलाया है, वे सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। ईश्वर ऐसा इसलिए करते हैं कि वे हमारे द्वारा अपने कार्यों और अपने उद्देश्य को परिपूर्णता प्रदान करना चाहते हैं। अपने कार्यों में हमारी सहभागिता हेतु उन्होंने हमें पापों से मुक्ति प्रदान की और हमें महिमान्वित किया है। इस भांति ईश्वर ने हमें अपनी महिमा के भागीदार बनाया है, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को ईश्वरीय महिमा के भागीदार बना सकें, उन्हें उस राज्य की ओर अग्रसर होने में मदद कर सकें जहां अनंत प्रेम, खुशी और शांति राज करती है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में यीशु हमारे लिए उसी ईश्वरीय राज्य की चर्चा विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम करते हैं, जहां हम खेत में बहुमूल्य खजाने, उत्तम मोती और समुद्र में फेंके जाने वाले जाल का जिक्र सुनते हैं। अपने मानवीय स्वभाव में हम कीमती वस्तुओं को अपने जीवन का अंग बनाने की चाह रखते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए प्रतिष्ठा और सम्मान का कारण बनती हैं। उनके द्वारा हम जीवन की समृद्धि का एहसास करते हैं। हमारे जीवन की असल समृद्धि उस अनंत जीवन को प्राप्त करने में है, जिसके लिए हम सभी बनाए गए हैं। उस निधि को ईश्वर ने हमारे हृदय रूपी खेत में स्थापित किया है, जिसे पाने हेतु हमें अपने हृदय की गहराई में उतरने और उसमें कार्य करने की मांग करती है। उस खजाने की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन के अन्य सारी चीज़ों को बेचने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन की सारी चीज़ों को बेचने की स्थिति में तब आते हैं जब हमें अनंत जीवन के मूल्य का एहसास होता है। ईश्वरीय विवेक में हम अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा दिए गए अनंत जीवन रूपी धन और उसके लिए कार्य करने के जज्बे को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विवेक हमें अनंत जीवन के महत्व और अर्थ को समझने में मदद करता है। आइए हम पवित्र आत्मा, ज्ञान और विवेक के स्रोत से निवेदन करें कि वे हमें अपनी प्रज्ञा से पोषित करें, जिससे हम अपने जीवन को उनकी प्रेरणा में संचालित कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने एशिया के धर्माध्यक्षों से कहा है कि वे अपने देशों में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ की 12वीं महासभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों से पोप ने कहा कि वे अपने देशों में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने और एशिया में कार्तिक कलीसिया के जीवन एवं भविष्य पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। पोप ने कहा, जब आप एशिया में कार्तिक कलीसिया के जीवन एवं भविष्य पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हैं, मैं आपको अपने आध्यात्मिक सामीप्य का भरोसा देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस मिलन में पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करें एवं रास्ता दिखाएं। पोप लियो ने यह बात शनिवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में 20 से 26 जुलाई तक होने वाली एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों और सदस्यों को प्रेषित वीडियो संदेश में कही है। अपने संदेश में पोप ने याद दिलाया कि एशियाई धर्माध्यक्षों की महासभा के लिए चुनी गई विषय वस्तु येसु के नथनाइल से कही गई बात से ली गई है, तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। उन्होंने कहा कि फिलिप और नथनाइल को अपने पीछे आने और अपने शिष्य बनने के लिए बुलाकर हमारे प्रभु खुद को ईश्वर और मानव के बीच एक विशेष मध्यस्थ के रूप में प्रकट करते हैं। पोप लियो ने आगे कहा, आज उनके शिष्यों के रूप में हम जानते हैं कि येसु न सिर्फ ईश्वर के साथ हमारी एकता के मध्यस्थ हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ भी। पोप ने महासभा में शामिल सभी प्रतिभागियों को याद दिलाया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा पर अपने विश्व प्रेरित पत्र मैनिफिका ओमानिटास में उन्होंने लिखा है कि ख्रिस्त एकता का स्रोत ख्रिस्त के रहस्य में है और यह संस्कारों खासकर पौत्र यूखरिस्त में हमारी सहभागिता से निकलती है। पोप ने आगे कहा, इसी कारण से मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि आप अपने स्थानीय कलीसियाओं में यूखरिस्तीय आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें, यानी कलीसियाई एकता की आध्यात्मिकता जो यूखरिस्त में हमारे प्रभु ईश्वर के वरदान से प्रवाहित प्रेम पर आधारित हो। उन्होंने कहा, इस तरह मुझे उम्मीद है कि स्थानीय कलीसियाओं के अंदर और उनके बीच सहभागिता के रिश्ते मजबूत होंगे और आपके देशों में ईश्वर की उपस्थिति के महान चिन्ह बनेंगे ताकि आप पूरे एशिया में एक साथ पुल बनाने वाले बन सकें। अंत में संत पापा ने एकत्रित सभी धर्माध्यक्षों एवं उनकी बातचीत को कलीसिया की मां धन्य कुमारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया।
1: संत पापा लियो 14वें ने महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ जाकिया एल कासिस को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए परम धर्म पीठ का स्थायी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आज शनिवार 25 जुलाई को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने इस नियुक्ति की घोषणा की। लेबनान में जन्मे महाधर्माध्यक्ष एल कासिस अब तक यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन में प्रेरितिक राजदूत के साथ साथ अरब पेनिनसुला में प्रेरितिक प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं। उधर वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट ने कल 24 जुलाई को ब्राजील के साओ पाओलो राज्य के अपारसिदा तीर्थालय में ब्राजीलियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के संचार के प्रेरितिक देखभाल समिति की नवी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर संबोधित किया। सुरक्षा ही मुख्य शब्द है, उस मेलजोल की सुरक्षा करना जो हमें जोड़ता है, हर इंसान के हुनर, उनकी कहानियां, उनके मिलन, अच्छाई, सुंदरता, मुक्ति की उम्मीद, छुटकारा, तब भी जब सब कुछ गलत होता दिख रहा हो। हर तरह के संचार के जरिए हम चलते फिरते मिशनरी शिष्य हैं, यानी एक सफर पर हैं, लेकिन यह उस रास्ते से अलग है जो हर चीज को हिसाब किताब, व्यापार या खरीद बिक्री तक सीमित कर देता है। भविष्य को देखने, बताने, याद रखने, बनाने का बताकर दूसरा तरीका चुनना, यह दूसरा रास्ता है जिसका जिक्र वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाओलो रूफिनी ने उस सम्मेलन में किया जो कल दोपहर 24 जुलाई को ब्राजील के साओ पाओलो राज्य के अपारसिदा तीर्थालय में ब्राजीलियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के संचार के प्रेरितिक देखभाल समिति की नवी राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ, जिसका शीर्षक था सुसमाचार प्रचार की गति, संचार का प्रेरितिक आयाम। डॉक्टर रुफिनी ने कहा, हम रुक नहीं सकते, हम अपने समय की चुनौतियों से पीछे नहीं रह सकते। एक दिशा है, एक लक्ष्य है जिसे पाना है और इसे मिलकर करना होगा। यह सभी संचार माध्यमों के जरिए मेलजोल बनाने, मिलकर काम करने वाली परियोजना बनाने, अलग अलग देशों और शहरों में काम करने वाली टीमों के साथ काम करने, उस एकता को दिखाने का समय है जिसमें सब कुछ मौजूद है। एक दूसरे की सेवा में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने, दुनिया को एक वैश्विक सूचना प्रणाली देने का समय है जो सच की खोज और उसे साझा करने पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपने गहरे विचार में प्रीफेक्ट ने कहा, हमारे संचार में यह महान और अनोखा गुण है जो अमूर्त नहीं बल्कि असली संबंध बनाता है। यह आर्थिक फायदे से नहीं बल्कि अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता को साझा करने के प्यार से चलता है। उन्होंने कहा, गवाही पर आधारित संचार में खुद को देने, सच में मेलजोल बनाने, लोगों को जोड़ने, उन्हें एक अनुभव में हिस्सा लेने, अकेलेपन से आजाद करने और एक अच्छे माहौल के हिस्से के रूप में खुद को पहचानने में मदद करने की ताकत होती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं सामाचार।

0: श्रोताओं, ईश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार के धन संपत्तियों से विभूषित किया है। हमारे लिए ईश्वर से मिली धन संपत्तियाँ हमारी योग्यताएं और हमारी क्षमताएं हैं, जिनके द्वारा हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए फल उत्पन्न करने को कहे जाते हैं। ईश्वर हमें अपने हृदय के भंडार से उत्तम चीज़ों को निकालकर उन्हें जन सामान्य की भलाई हेतु उपयोग करने को कहते हैं, और ऐसा करने के द्वारा हम अपने जीवन के कार्यों द्वारा ईश्वर की सेवा, पूजा और महिमा करते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 17वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार में हमारे लिए विभिन्न दृष्टांतों की चर्चा की गई है, जिनके द्वारा यीशु ख्रीस्त हमें स्वर्ग राज्य के रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए अक्षय निधि है। हमें ईश्वर उस मूल्यवान अनंत निधि की खोज करने का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम उसी के लिए बनाए गए हैं। आइए हम ईश वचनों का श्रवण करते हुए अपने जीवन के आत्म परख करें कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ईश्वर ने हमें अनमोल खजाने के रूप में सौंपा है। वे कौन कौन से अच्छी बातें हैं जिन्हें ईश्वर ने मोतियों के रूप में हमारे हृदय रूपी खेतों में गाड़ कर रखा है। क्या हम अपने हृदय की गहराई में उतरते और उन कीमती मोतियों को खोजने का प्रयास करते हैं? हम अपने हृदय रूपी भंडार से किन किन चीज़ों को निकालते और उन्हें ईश्वर की महिमा हेतु लोगों की सेवा में उपयोग करते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है।
0: श्रोताओं, ईश्वर के सुमधुर वचन हमें अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीजों को खोज कर निकालने में मदद करे, जिससे हम उनके उपयोग द्वारा ईश्वर की बनाई गई सृष्टि और ईश प्रजा की सेवा हेतु उनका व्यय कर सकें, व्यय कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें, जिनके लिए हमें यह सुंदर जीवन दिया गया है। श्रोताओं, राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए एक अनमोल दिव्य खजाने, विवेकपूर्ण समझदारी की चर्चा करता है, जिसकी मांग राजा सुलेमान अपने लिए ईश्वर से अपने को सौंपी गई ईश प्रजा की सेवा हेतु करते हैं, देख रेख हेतु करते हैं। राजा सुलेमान की मांग से ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें वे सारी अन्य चीज़ें प्रदान करते हैं जो उन्हें राजपाट संचालन हेतु जरूरी था। यहाँ गौर करने की एक बात यह है कि राजा सुलेमान अपनी प्रसिद्धि और ख्याति हेतु विवेक की मांग नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी प्रजा लोगों की सेवा हेतु, लोगों की देख रेख हेतु यह मांग करते हैं, जिससे वे अपनी प्रजा का उचित न्याय कर सकें। राजा सुलेमान की मांग ईश्वर को प्यारी लगती है और वे न केवल विवेक बल्कि अन्य सारी आशीष और कृपाओं से उन्हें विभूषित करते हैं।

इस तरह राजा सुलेमान की मांग में हम सेवा के भाव को पाते हैं, जिसमें हमारे लिए उनकी नम्रता प्रकट होती है। इस भांति राजा सुलेमान ईश्वरीय प्रज्ञा से पोषित अपनी प्रजा की सेवा और देख रेख विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, जो उन्हें ख्याति और प्रसिद्धि प्रदान करती है, जिसकी चर्चा हम राजाओं के ग्रंथ में पाते हैं। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वरीय अनुग्रह की चर्चा करता है, जो सदैव हमारे जीवन में बना रहता है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने कार्यों के लिए चुना और बुलाया है। ईश्वर ने जिन लोगों को अपनी प्रेरिताई हेतु नियुक्त किया और बुलाया है, वे सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। ईश्वर ऐसा इसलिए करते हैं कि वे हमारे द्वारा अपने कार्यों और अपने उद्देश्य को परिपूर्णता प्रदान करना चाहते हैं। अपने कार्यों में हमारी सहभागिता हेतु उन्होंने हमें पापों से मुक्ति प्रदान की और हमें महिमान्वित किया है। इस भांति ईश्वर ने हमें अपनी महिमा के भागीदार बनाया है, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को ईश्वरीय महिमा के भागीदार बना सकें, उन्हें उस राज्य की ओर अग्रसर होने में मदद कर सकें जहां अनंत प्रेम, खुशी और शांति राज करती है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में यीशु हमारे लिए उसी ईश्वरीय राज्य की चर्चा विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम करते हैं, जहाँ हम खेत में बहुमूल्य खजाने, उत्तम मोती और समुद्र में फेंके जाने वाले जाल का जिक्र सुनते हैं। अपने मानवीय स्वभाव में हम कीमती वस्तुओं को अपने जीवन का अंग बनाने की चाह रखते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए प्रतिष्ठा और सम्मान का कारण बनती हैं। उनके द्वारा हम जीवन की समृद्धि का एहसास करते हैं। हमारे जीवन की असल समृद्धि उस अनंत जीवन को प्राप्त करने में है, जिसके लिए हम सभी बनाए गए हैं। उस निधि को ईश्वर ने हमारे हृदय रूपी खेत में स्थापित किया है, जिसे पाने हेतु हमें अपने हृदय की गहराई में उतरने और उसमें कार्य करने की मांग करती है। उस खजाने की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन के अन्य सारी चीजों को बेचने की जरूरत है। हम अपने जीवन की सारी चीज़ों को बेचने की स्थिति में तब आते हैं जब हमें अनंत जीवन के मूल्य का एहसास होता है। ईश्वरीय विवेक में हम अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा दिए गए अनंत जीवन रूपी धन और उसके लिए कार्य करने के जज्बे को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विवेक हमें अनंत जीवन के महत्व और अर्थ को समझने में मदद करता है। आइए हम पवित्र आत्मा, ज्ञान और विवेक के स्रोत से निवेदन करें कि वे हमें अपनी प्रज्ञा से पोषित करें, जिससे हम अपने जीवन को उनकी प्रेरणा में संचालित कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने एशिया के धर्माध्यक्षों से कहा है कि वे अपने देशों में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ की 12वीं महासभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों से पोप ने कहा कि वे अपने देशों में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने और एशिया में कार्तिक कलीसिया के जीवन एवं भविष्य पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। पोप ने कहा, जब आप एशिया में कार्तिक कलीसिया के जीवन एवं भविष्य पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हैं, मैं आपको अपने आध्यात्मिक सामीप्य का भरोसा देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस मिलन में पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करें एवं रास्ता दिखाएं। पोप लियो ने यह बात शनिवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में 20 से 26 जुलाई तक होने वाली एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों और सदस्यों को प्रेषित वीडियो संदेश में कही है। अपने संदेश में पोप ने याद दिलाया कि एशियाई धर्माध्यक्षों की महासभा के लिए चुनी गई विषय वस्तु येसु के नथनाइल से कही गई बात से ली गई है, तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। उन्होंने कहा कि फिलिप और नथनाइल को अपने पीछे आने और अपने शिष्य बनने के लिए बुलाकर हमारे प्रभु खुद को ईश्वर और मानव के बीच एक विशेष मध्यस्थ के रूप में प्रकट करते हैं। पोप लियो ने आगे कहा, आज उनके शिष्यों के रूप में हम जानते हैं कि येसु न सिर्फ ईश्वर के साथ हमारी एकता के मध्यस्थ हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ भी। पोप ने महासभा में शामिल सभी प्रतिभागियों को याद दिलाया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा पर अपने विश्व प्रेरित पत्र मैनिफिका ओमानिटास में उन्होंने लिखा है कि ख्रिस्त एकता का स्रोत ख्रिस्त के रहस्य में है और यह संस्कारों खासकर पौत्र यूखरिस्त में हमारी सहभागिता से निकलती है। पोप ने आगे कहा, इसी कारण से मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि आप अपने स्थानीय कलीसियाओं में यूखरिस्तीय आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें, यानी कलीसियाई एकता की आध्यात्मिकता जो यूखरिस्त में हमारे प्रभु ईश्वर के वरदान से प्रवाहित प्रेम पर आधारित हो। उन्होंने कहा, इस तरह मुझे उम्मीद है कि स्थानीय कलीसियाओं के अंदर और उनके बीच सहभागिता के रिश्ते मजबूत होंगे और आपके देशों में ईश्वर की उपस्थिति के महान चिन्ह बनेंगे ताकि आप पूरे एशिया में एक साथ पुल बनाने वाले बन सकें। अंत में संत पापा ने एकत्रित सभी धर्माध्यक्षों एवं उनकी बातचीत को कलीसिया की मां धन्य कुमारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया।
1: संत पापा लियो 14वें ने महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ जाकिया एल कसिस को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए परम धर्म पीठ का स्थायी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आज शनिवार 25 जुलाई को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने इस नियुक्ति की घोषणा की। लेबनान में जन्मे महाधर्माध्यक्ष एल कसिस अब तक यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन में प्रेरितिक राजदूत के साथ साथ अरब पेनिनसुला में प्रेरितिक प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं। उधर वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट ने कल 24 जुलाई को ब्राजील के साओ पाओलो राज्य के अपारसिदा तीर्थालय में ब्राजीलियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के संचार के प्रेरितिक देखभाल समिति की नवी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर संबोधित किया। सुरक्षा ही मुख्य शब्द है, उस मेलजोल की सुरक्षा करना जो हमें जोड़ता है, हर इंसान के हुनर, उनकी कहानियां, उनके मिलन, अच्छाई, सुंदरता, मुक्ति की उम्मीद, छुटकारा, तब भी जब सब कुछ गलत होता दिख रहा हो। हर तरह के संचार के जरिए हम चलते फिरते मिशनरी शिष्य हैं, यानी एक सफर पर हैं, लेकिन यह उस रास्ते से अलग है जो हर चीज को हिसाब किताब, व्यापार या खरीद बिक्री तक सीमित कर देता है। भविष्य को देखने, बताने, याद रखने, बनाने का बताकर दूसरा तरीका चुनना, यह दूसरा रास्ता है जिसका जिक्र वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाओलो रूफिनी ने उस सम्मेलन में किया जो कल दोपहर 24 जुलाई को ब्राजील के साओ पाओलो राज्य के अपारसिदा तीर्थालय में ब्राजीलियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के संचार के प्रेरितिक देखभाल समिति की नवी राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ, जिसका शीर्षक था सुसमाचार प्रचार की गति, संचार का प्रेरितिक आयाम। डॉक्टर रुफिनी ने कहा, हम रुक नहीं सकते, हम अपने समय की चुनौतियों से पीछे नहीं रह सकते। एक दिशा है, एक लक्ष्य है जिसे पाना है और इसे मिलकर करना होगा। यह सभी संचार माध्यमों के जरिए मेलजोल बनाने, मिलकर काम करने वाली परियोजना बनाने, अलग अलग देशों और शहरों में काम करने वाली टीमों के साथ काम करने, उस एकता को दिखाने का समय है जिसमें सब कुछ मौजूद है। एक दूसरे की सेवा में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने, दुनिया को एक वैश्विक सूचना प्रणाली देने का समय है जो सच की खोज और उसे साझा करने पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपने गहरे विचार में प्रीफेक्ट ने कहा, हमारे संचार में यह महान और अनोखा गुण है जो अमूर्त नहीं बल्कि असली संबंध बनाता है। यह आर्थिक फायदे से नहीं बल्कि अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता को साझा करने के प्यार से चलता है। उन्होंने कहा, गवाही पर आधारित संचार में खुद को देने, सच में मेलजोल बनाने, लोगों को जोड़ने, उन्हें एक अनुभव में हिस्सा लेने, अकेलेपन से आजाद करने और एक अच्छे माहौल के हिस्से के रूप में खुद को पहचानने में मदद करने की ताकत होती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर।

0: दौड़ और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु येसु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउडेटर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत नाना नानी एवं बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस पर संत पापा लियो चौधरी के संदेश को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, नबी साज के ग्रंथ से लिया गया यह वाक्यांश नाना नानी एवं बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस के लिए पोप लियो चौधरी के संदेश की विषय वस्तु है।
1: कारी नोनी, कारी निपोती, बुंजोर्नो, बेंदेनुती।
0: 26 जुलाई एवं जुलाई महीना का अंतिम रविवार कार्तिक कलीसिया के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज कलीसिया यीशु के नाना नानी संत अन्ना एवं संत जोकिम का पर्व मना रही है और इसी दिन नाना नानी एवं बुजुर्गों के लिए छठवां विश्व दिवस भी मनाया जा रहा है। संयोग से ये दोनों ही अवसर एक साथ मनाए जा रहे हैं। 2021 में पोप फ्रांसिस द्वारा स्थापित इस दिवस का उद्देश्य है यह चिंतन करना कि दादा दादी और बुजुर्गों की उपस्थिति हर परिवार एवं कलीसियाई समुदाय में आशा का चिन्ह कैसे बन सकती है। तो लीजिए प्रस्तुत है नाना नानी एवं बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस पर संत पापा लियो चौधरी का संदेश।
2: Cari fratelli e sorelle,
0: पोप लियो चौधरी ने अपने संदेश में लिखा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, नबी ईसाईस के माध्यम से प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हम में से किसी को भी कभी नहीं भूलेंगे। वे हमें भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने हमें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है और उनका प्यार एक माँ के अपने बच्चों के लिए प्यार से भी ज्यादा है। नबी हमें एक अंतरंग एवं गहन बातचीत की झलक देते हैं जिसमें ईश्वर परिचित शब्दों में हर इंसान से अलग अलग और सभी लोगों से बात करते हैं। आज भी हम इन शब्दों को हम प्रत्येक के लिए कह सकते हैं और हर कोई सुन सकता है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, ये शब्द हमें सांत्वना एवं उम्मीद से भर देते हैं। यह उस दर्दनाक एहसास का जवाब है जो दिल को परेशान करता कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। पवित्र धर्म ग्रंथ में, खासकर भजन संहिता में, कितनी बार उन लोगों की निराशा से प्रार्थना निकलती है जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। भुला दिए जाने का दर्दनाक एहसास दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को होता है और उनमें काफी बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। पोप ने कहा कि ईश्वर का प्यार जो किसी को नहीं भूलता, खुद को न्याय के कार्य और उस गुमनामी के जवाब के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें मानव जीवन अक्सर खो जाती है। खासकर कई बुजुर्गों का जीवन एक ऐसे पर्दे से ढका हुआ लगता है जो उनके चेहरों के हाव भाव को धुंधला कर देता और उन्हें गुमनामी में ढक देता है। ऐसे उन घरों में होता है जहां अकेलापन छाया रहता है और उन देखभाल केंद्रों में भी जहां इंसान की पहचान एक बेड नंबर या बीमारी तक सिमट जाने का खतरा होता है। अतः संत पापा ने कहा कि दादा दादी और बुजुर्गों का विश्व दिवस मनाना एक अच्छा अवसर है कि हम फिर से जानें कि कलीसिया को सभी की माँ बनने के लिए बुलाया गया है और किसी भी उम्र में हम हमेशा खुद को ईश्वर के बेटे और बेटियां मान सकते हैं। इसलिए यह दिन सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए, अपने दादा दादी, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और यहाँ तक कि उन लोगों से भी मिलने के खूबसूरत रिवाज को फिर से शुरू करने की प्रेरणा बने जिनके पास उनसे मिलने वाला कोई नहीं है। संत पापा ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा, इस संदेश एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा उन्हें पोप का सामीप्य एवं स्नेह प्रदान करें। यह सुनिश्चित करें कि नबी के शब्द मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा एक कोमल और प्यार भरी मुलाकात का रूप ले। एक ऐसे दौर में जो तेजी और बिखराव को बढ़ावा दे रहा है, मानव अभी भी ध्यान देने वाले दिमाग, अच्छे शब्दों और कोमलता दिखाने वाले हाथों से देखभाल और पहचान पाने के लिए तरसता है। इन सभी कारणों से कलीसिया खुशी से प्रभु की प्रतिज्ञा की घोषणा करती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। संत पापा ने कहा कि यह किसी भी उम्र में खुशी की बात है, लेकिन विशेषकर तब जब हम युवा नहीं रह जाते। यह जानना, जैसा कि पोप जॉन पॉल प्रथम ने कहा था, कि हम ईश्वर की ओर से अमर प्रेम को ग्रहण करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जब अंधेरा लगता है तब भी उनकी आंखें हमेशा हम पर खुली रहती हैं। वे हमारे पिता हैं और इससे भी अधिक वे हमारी माँ हैं। इसलिए ईश्वर की बाहों में लौटने का निमंत्रण किसी भी उम्र में सार्थक है। बहुत से लोगों के लिए ईश्वर की कोमल करुणा का अनुभव जीवन के लंबे सफर के दौरान होता है और कभी कभी तो जीवन के अंतिम चरण में जाकर ही होता है। वास्तव में पहले की तुलना में आज यह अधिक सामान्य हो गया है कि लोग बिना किसी सच्चे आस्था अनुभव के ही वृद्धावस्था तक पहुँच जाते हैं। ऐसे मामलों में वृद्धावस्था विशेषकर इस जीवन काल में अधिक तीव्रता से

कि जब दुर्बलता जो जन्म से ही मानव के जीवन संगिनी रही है जीवन पर हावी होने लगती है, तब हमारा बुलावा क्या है। संत पापा ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी नाजुकता से मत डरिए। यही दुर्बलता अपने भीतर एक नई संभावना समेटे हुए है, जो जीवन के अन्य सभी चरणों पर भी नई रोशनी डालती है। वास्तव में जब हम अपनी नाजुकता को स्वीकार करते हैं, तब हमारे हृदय एक दूसरे का सहारा बनने के लिए खुल जाते हैं और उस प्रभु को पुकारते हैं जो ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसे कोई भी मानवीय शक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकती। हृदयों का गहरा मेल मिलाप और उनके साथ सच्ची शांति, इस तरह हम एक ख्रिस्ते के रूप में अपने बुढ़ापा को जी सकते हैं, नाजुक फिर भी बुलाए गए। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत नाना नानी और बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस पर पोप लियो 14वें के संदेश को सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका एक और सुबह। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो शराब की लत में बुरी तरह फंसे हुए हैं। शराब की लत एक गंभीर बीमारी है। शराब की वजह से उनकी जिंदगी में अनेक शारीरिक मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है, अच्छी भली नौकरी चली जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति शराब को नहीं छोड़ पाता। यही शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण है। श्रोताओ, ऐसी अवस्था में शराबी इस लत पर काबू पाने का दृढ़ निश्चय करने पर भी अकेला इस बीमारी से लड़ नहीं सकता। इस लत को छुड़वाने का काम घर से शुरू होता है। उसे अपने परिवार, अपने मित्रों के सहारे की जरूरत होती है, जो उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सके, उन्हें सहारा दे सके। आशा है आज की नाटिका इस बीमारी में फंसे लोगों का मनोबल बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका एक और सुबह।
1: सुनो, कल रश्मि की स्कूल की फीस भरना है। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, और तुम हो कि अनसुनी कर रहे हो।
2: सुन लिया मैंने, कोई बहरा नहीं हूँ मैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास हो तो तू भर दे इसकी फीस।
1: हाँ हाँ, तुम्हारे पास क्यों होंगे इसकी फीस के पैसे। तुम्हारे पास तो सिर्फ अपनी शराब पीने के लिए पैसे होते हैं, सिर्फ शराब के लिए।
2: तो क्या शराब में अपने पैसे की पीता हूँ, अपनी कमाई की? तेरी कमाई की नहीं पीता, तू अपनी कमाई अपने पास रख।
1: आखिर शराब से फायदा क्या है तुम्हें? तुम्हें पता है शराब में अगर किसी कीड़े को डालो तो वो भी मर जाता है।
2: देखा तूने, पेट के लिए कितनी अच्छी है शराब, तभी तो मैं पेट के कीड़े मारने के लिए शराब पीता हूँ।
1: शराब जैसी बुरी चीज तुम्हें इतनी पसंद कैसे है?
2: कमाल करती है तू, मुझे तो तू भी बहुत पसंद है सरिता।
1: तुम्हें पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घर तबाह कर दिए हैं।
2: और तुझे पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घरों को बना भी दिया है। बड़े बड़े व्यापारों की डीलिंग पार्टियों में शराब के साथ ही होती है।
1: तुम उनकी बात छोड़ो, आदमी के पास पैसा आते ही तमाम बुराइयां भी पैसे के साथ साथ चली आती हैं। और जब शराब जैसी बुराई हावी होती है तो फिर पैसा कहाँ गया उसका पता भी नहीं चलता।
3: मम्मी ठीक कहती है पापा।
2: तू चुप रह, ज्यादा समझदार न बन।
1: क्यों, कि तुम्हारी समझदारी पर अतिक्रमण कर रही है क्या? आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि शराब सेहत और घर दोनों के लिए अच्छी नहीं है?
2: जब तू शराब पीती ही नहीं है तो तुझे क्या पता कि शराब सेहत और घर के लिए अच्छी होती है या नहीं? अरे शराब पीने से जहाँ सेहत बढ़ती है वहीं घर में प्यार भी बढ़ता है, समझी तू?
1: सिर्फ ऊपर ऊपर से ही ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, भीतर ही भीतर तो शराब ही इन्हें खोखला बनाती है।
2: ये

0: तेरा वहम है सरिता, पीने से आदमी अपने में रहता है और असीम शांति और मस्ती का एहसास रहता है।
1: अच्छा, तो क्या शराब इतनी अच्छी चीज है?
0: तो फिर तुझे क्या पता, तभी तो मैं पीता हूँ।
1: अच्छा, तब तो फिर शराब मुझे भी चखनी पड़ेगी कि क्या वाकई में शराब इतनी अच्छी है।
0: अरे छोड़, क्यों मजाक करती है? शराब और अब चखना तेरे बस की बात नहीं, इसे तो मर्द ही पी सकते हैं, मर्द। अब जाने दे मुझे, मेरा टाइम हो गया।
1: बस चले फिर शराब का गुणगान कर शराब पीने। आज 2 दिन हो गए इन्हें ऑफिस से छुट्टी लिए, अब बैठेंगे जाकर अपने शराबी दोस्तों के बीच। ठीक है, तुम कहते हो ना कि शराब चखना मेरे बस की बात नहीं, तो अब मैं भी इन्हें शराब चख कर ही बताऊंगी।
2: तो क्या मम्मी तुम भी शराब पियोगी?
1: बस अब तू देखती जा बेटी कि मैं क्या करती हूँ।
0: रश्मि, क्या हुआ है तेरी माँ को? ये इस तरह झूम क्यों हो रही है? इसकी तो आंखें भी बंद है।
2: कुछ नहीं पापा, शायद मम्मी की तबीयत खराब है।
0: तबीयत खराब है? जरा मुझे भी तो देखने दे। हैं? शराब की बदबू? रश्मि, तेरी माँ की हिम्मत कैसे हुई शराब पीने की? कहाँ से आ रही हो तुम दोनों?
2: हम लोग वो सिरे वाले महेश अंकल के यहाँ से आ रहे हैं। पापा, आप भी तो शराब पीते हैं, आप तो रोज शराब पीते हैं। अगर आज मम्मी ने शराब पी ली तो क्या हुआ? आप ही तो कहते हैं कि शराब बहुत अच्छी चीज है, तो आज मम्मी ने पी ली।
0: चुप रहे नादान लड़की।
2: मैं अब सब समझने लगी हूँ पापा, ना समझ नहीं रही मैं, 12वीं में पढ़ती हूँ।
0: मगर इसे तो देख, किस तरह से नशे में धुत है ये तेरी माँ। आखिर इसे शराब मिली कहाँ से?
2: वो सिरे पे रहने वाले आपके दोस्त है ना महेश अंकल,
0: हाँ,
2: मम्मी और मैं उनकी बीबी यानी कि आंटी से मिलने गए थे। वहीं मम्मी ने फ्रिज में महेश अंकल की शराब की बोतल देखी और आंटी से मांग कर कुछ शराब पी ली। आंटी ने भी पिया।
0: अरे महेश की औरत पिए तो पिए, इसे क्या जरूरत है शराब पीने की? अब हालत देख ले इसकी, बेहोश है ये, बेहोश।
2: तो क्या पापा, जब आप भी पीकर आते हैं तब आप भी तो ऐसे ही बेहोश रहते हैं।
0: मगर ये तो अब मेरे लिए मुसीबत बन गई।
2: आप भी तो पीने के बाद मम्मी के लिए मुसीबत बन जाते हैं। आज मम्मी आपके लिए मुसीबत बन गई तो क्या?
0: मैंने भी कहा इसे शराब चखने की बात कह दिया, अब क्या करूं?
2: कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी भी कुछ नहीं करती और आप दूसरे दिन होश में आते हैं। कल सुबह मम्मी भी होश में आ जाएगी।
0: तेरी माँ ने तो कमाल कर दिया, आज पैसे ना होने के कारण मैं सूखा रहा तो ये पीकर गीली होगी। सुबह हो गई तेरी?
1: आज क्या? मेरी तो रोज ही सुबह होती है।
0: खैर मना ले अपनी, आज तेरी जिंदगी की नई सुबह हुई है। कल तो उस महेश के बच्चे की औरत के यहाँ से खूब शराब पीकर आई थी, इतनी कि पूछो मत। कल शाम से ही बेहोश थी तू, अब जाके होश आया है तेरे को?
1: मुझे तो अब जाकर होश आ भी गया, तुम्हें तो ना जाने कब होश आएगा, और भगवान जाने आएगा भी या नहीं। तुम्हारी जिंदगी तो शराब और शराब और शराब बनकर ही रह गई है।
0: ये तू क्या कह रही है सरिता?
1: ठीक कह रही हूँ मैं, शराब के सिवा और तुम्हारे जीवन में किसी और की जगह ही क्या है, न मेरी न अपनी बेटी रश्मि की।
0: ऐसा मत बोल सरिता, तुझे पता है मैं कल से कितना परेशान हूँ। तूने शराब क्यों पी? क्या जरूरत थी तुझे शराब पीने की? इतनी शराब पीने से अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा और इस रश्मि बेटी का क्या होता, इतना तो सोचा होता?
1: और तुम जो रोज शराब पीकर आते हो, तुमने कभी ये सोचा कि कहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा और रश्मि का क्या होगा? बोलो बोलो, मेरा एक दिन शराब पीकर आना तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया, और तुम जो रोज मेरे लिए मुसीबत बनकर आते हो वो?
0: मेरी बात छोड़ सरिता, मैं तो हूं ही बुरा, मगर आज तुम मुझसे एक वादा कर सरिता कि आज के बाद तू कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगी। शराब अच्छी चीज नहीं है सरिता।
1: मगर तुम तो कहते थे कि शराब अच्छी चीज होती है, तुमने तो शराब की तारीफ के कई कसीदे पढ़े थे।
0: मैं गलत था सरिता, सचमुच में शराब अच्छी चीज नहीं होती। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है सरिता, पीने के बाद आदमी गुस्सा भी तो करता है, नाली में गिरता है, गाली देता है, झगड़ा करता है। नहीं सरिता, शराब में कोई अच्छा ही नहीं है। शराब को अच्छा कहना तो पीने का सिर्फ एक बहाना है, बहाना।
1: तो फिर वादा करो कि आज के बाद तुम कभी शराब नहीं पियोगे।
0: मैं वादा करता हूँ सरिता कि आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा।
2: वाह पापा, ये हुई ना कोई बात।
0: मगर सरिता तुझे भी एक वादा करना होगा कि तू अब कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगी।
2: अरे पापा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कल क्या मम्मी ने सचमुच शराब पी थी? अरे पापा, मम्मी ने तो प्लान बनाकर महेश आंटी से शराब मांग कर अपने ऊपर छिड़क ली थी और आपके सामने पूरे समय शराबी की एक्टिंग करती रही ताकि आप शराब छोड़ने का वादा कर सकें, और मम्मी का प्लान कामयाब भी हो गया।
0: तो क्या सरिता सचमुच तुमने शराब नहीं पी थी?
1: नहीं, रश्मि ठीक कह रही है, और मुझे खुशी है कि आज तुमने शराब छोड़ने का वादा किया है। सचमुच आज मेरे जीवन में एक और सुबह आई है, जीवन का नया अर्थ लिए।
3: एक और सुबह, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, मेरी इक्का और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत नाना नानी एवं बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस पर संत पापा लियो चौधरी के संदेश को प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। नबी साज के ग्रंथ से लिया गया यह वाक्यांश नाना नानी एवं बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस के लिए पोप लियो 14वें के संदेश की विषय वस्तु है।
1: Cari nonni, cari nipoti, buongiorno, benvenuti.
0: 26 जुलाई एवं जुलाई महीना का अंतिम रविवार कार्तिक कलीसिया के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज कलीसिया यीशु के नाना नानी संत अन्ना एवं संत जोकिम का पर्व मना रही है और इसी दिन नाना नानी एवं बुजुर्गों के लिए छठवां विश्व दिवस भी मनाया जा रहा है। संयोग से ये दोनों ही अवसर एक साथ मनाए जा रहे हैं। 2021 में पोप फ्रांसिस द्वारा स्थापित इस दिवस का उद्देश्य है यह चिंतन करना कि दादा दादी और बुजुर्गों की उपस्थिति हर परिवार एवं कलीसियाई समुदाय में आशा का चिन्ह कैसे बन सकती है। तो लीजिए प्रस्तुत है नाना नानी एवं बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस पर संत पापा लियो 14वें का संदेश।
2: Cari fratelli e sorelle,
0: पोप लियो 14वें ने अपने संदेश में लिखा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, नबी ईसाईस के माध्यम से प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हम में से किसी को भी कभी नहीं भूलेंगे। वे हमें भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने हमें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है और उनका प्यार एक माँ के अपने बच्चों के लिए प्यार से भी ज्यादा है। नबी हमें एक अंतरंग एवं गहन बातचीत की झलक देते हैं जिसमें ईश्वर परिचित शब्दों में हर इंसान से अलग अलग और सभी लोगों से बात करते हैं। आज भी हम इन शब्दों को हम प्रत्येक के लिए कह सकते हैं और हर कोई सुन सकता है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। ये शब्द हमें सांत्वना एवं उम्मीद से भर देते हैं। यह उस दर्दनाक एहसास का जवाब है जो दिल को परेशान करता कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। पवित्र धर्म ग्रंथ में खासकर भजन संहिता में कितनी बार उन लोगों की निराशा से प्रार्थना निकलती है जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। भुला दिए जाने का दर्दनाक एहसास दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को होता है और उनमें काफी बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। पोप ने कहा कि ईश्वर का प्यार जो किसी को नहीं भूलता खुद को न्याय के कार्य और उस गुमनामी के जवाब के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें मानव जीवन अक्सर खो जाती है। खासकर कई बुजुर्गों का जीवन एक ऐसे पर्दे से ढका हुआ लगता है जो उनके चेहरों के हाव भाव को धुंधला कर देता और उन्हें गुमनामी में ढक देता है। ऐसे उन घरों में होता है जहां अकेलापन छाया रहता है और उन देखभाल केंद्रों में भी जहां इंसान की पहचान एक बेड नंबर या बीमारी तक सिमट जाने का खतरा होता है। अतः संत पापा ने कहा कि दादा दादी और बुजुर्गों का विश्व दिवस मनाना एक अच्छा अवसर है कि हम फिर से जानें कि कलीसिया को सभी की माँ बनने के लिए बुलाया गया है और किसी भी उम्र में हम हमेशा खुद को ईश्वर के बेटे और बेटियां मान सकते हैं। इसलिए यह दिन सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए, अपने दादा दादी, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और यहाँ तक कि उन लोगों से भी मिलने के खूबसूरत रिवाज को फिर से शुरू करने की प्रेरणा बने जिनके पास उनसे मिलने वाला कोई नहीं है। संत पापा ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा, इस संदेश एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा उन्हें पोप का सामीप्य एवं स्नेह प्रदान करें। यह सुनिश्चित करें कि नबी के शब्द मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा एक कोमल और प्यार भरी मुलाकात का रूप ले। एक ऐसे दौर में जो तेजी और बिखराव को बढ़ावा दे रहा है, मानव अभी भी ध्यान देने वाले दिमाग, अच्छे शब्दों और कोमलता दिखाने वाले हाथों से देखभाल और पहचान पाने के लिए तरसता है। इन सभी कारणों से कलीसिया खुशी से प्रभु की प्रतिज्ञा की घोषणा करती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। संत पापा ने कहा कि यह किसी भी उम्र में खुशी की बात है, लेकिन विशेषकर तब जब हम युवा नहीं रह जाते। यह जानना, जैसा कि पोप जॉन पॉल प्रथम ने कहा था, कि हम ईश्वर की ओर से अमर प्रेम को ग्रहण करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जब अंधेरा लगता है तब भी उनकी आंखें हमेशा हम पर खुली रहती हैं। वे हमारे पिता हैं और इससे भी अधिक वे हमारी माँ हैं। इसलिए ईश्वर की बाहों में लौटने का निमंत्रण किसी भी उम्र में सार्थक है। बहुत से लोगों के लिए ईश्वर की कोमल करुणा का अनुभव जीवन के लंबे सफर के दौरान होता है और कभी कभी तो जीवन के अंतिम चरण में जाकर ही होता है। वास्तव में पहले की तुलना में आज यह अधिक सामान्य हो गया है कि लोग बिना किसी सच्चे आस्था अनुभव के ही वृद्धावस्था तक पहुँच जाते हैं। ऐसे मामलों में वृद्धावस्था विशेषकर इस जीवन काल में अधिक तीव्रता से उठने वाले प्रश्नों के कारण आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने या उसे फिर से अपनाने का उपयुक्त समय बन सकती है। इस नई आध्यात्मिक यात्रा में व्यक्ति यह पहचान सकता है कि ईश्वर, जैसा कि संत अगस्तीन कहते हैं, एक माँ है। उस ईश्वर की ओर जो हमारे निकट आते और जिनकी कोमलता को हम पहचानना सीखते हैं, हम प्रार्थना में संतान सुलभ विश्वास के साथ मुड़ सकते हैं। उनकी ओर लौटने या उनकी शरण में आने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। यह हर व्यक्ति के लिए एक महान अनुग्रह सिद्ध हो सकता है। इसलिए पहले से कहीं अधिक यह आवश्यक है कि हम आपके साथ इस बात पर चिंतन करें कि जब दुर्बलता, जो जन्म से ही मानव के जीवन संगिने रही है, जीवन पर हावी होने लगती है, तब हमारा बुलावा क्या है। संत पापा ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी नाजुकता से मत डरिए। यही दुर्बलता अपने भीतर एक नई संभावना समेटे हुए है, जो जीवन के अन्य सभी चरणों पर भी नई रोशनी डालती है। वास्तव में जब हम अपनी नाजुकता को स्वीकार करते हैं, तब हमारे हृदय एक दूसरे का सहारा बनने के लिए खुल जाते हैं और उस प्रभु को पुकारते हैं जो ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसे कोई भी मानवीय शक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकती। हृदयों का गहरा मेल मिलाप और उनके साथ सच्ची शांति, इस तरह हम एक ख्रिस्ते के रूप में अपने बुढ़ापा को जी सकते हैं, नाजुक फिर भी बुलाए गए। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत नाना नानी और बुजुर्गों के 6वें विश्व दिवस पर पोप लियो 14वें के संदेश को सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका एक और सुबह। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो शराब की लत में बुरी तरह फंसे हुए हैं। शराब की लत एक गंभीर बीमारी है। शराब की वजह से उनकी जिंदगी में अनेक शारीरिक मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है, अच्छी भली नौकरी चली जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति शराब को नहीं छोड़ पाता। यही शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण है। श्रोताओ, ऐसी अवस्था में शराबी इस लत पर काबू पाने का दृढ़ निश्चय करने पर भी अकेला इस बीमारी से लड़ नहीं सकता। इस लत को छुड़वाने का काम घर से शुरू होता है। उसे अपने परिवार, अपने मित्रों के सहारे की जरूरत होती है, जो उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सके, उन्हें सहारा दे सके। आशा है आज की नाटिका इस बीमारी में फंसे लोगों का मनोबल बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका एक और सुबह।
1: सुनो, कल रश्मि की स्कूल की फीस भरना है। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे और तुम हो कि अनसुनी कर रहे हो।
2: सुन लिया मैंने, कोई बहरा नहीं हूँ मैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास हो तो तू भर दे इसकी फीस।
1: हाँ हाँ, तुम्हारे पास क्यों होंगे इसकी फीस के पैसे। तुम्हारे पास तो सिर्फ अपनी शराब पीने के लिए पैसे होते हैं, सिर्फ शराब के लिए।
2: तो क्या शराब में अपने पैसे की पीता हूँ, अपनी कमाई की? तेरी कमाई की नहीं पीता, तू अपनी कमाई अपने पास रख।
1: आखिर शराब से फायदा क्या है तुम्हें? तुम्हें पता है शराब में अगर किसी कीड़े को डालो तो वो भी मर जाता है।
2: देखा तूने, पेट के लिए कितनी अच्छी है शराब, तभी तो मैं पेट के कीड़े मारने के लिए शराब पीता हूँ।
1: शराब जैसी बुरी चीज तुम्हें इतनी पसंद कैसे है?
2: कमाल करती है तू, मुझे तो तू भी बहुत पसंद है सरिता।
1: तुम्हें पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घर तबाह कर दिए हैं।
2: और तुझे पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घरों को बना भी दिया है। बड़े बड़े व्यापारों की डीलिंग पार्टियों में शराब के साथ ही होती है।
1: तुम उनकी बात छोड़ो, आदमी के पास पैसा आते ही तमाम बुराइयां भी पैसे के साथ साथ चली आती हैं। और जब शराब जैसी बुराई हावी होती है तो फिर पैसा कहाँ गया उसका पता भी नहीं चलता।
3: मम्मी ठीक कहती है पापा।
2: तू चुप रह, ज्यादा समझदार न बन।
1: क्यों, कि तुम्हारी समझदारी पर अतिक्रमण कर रही है क्या? आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि शराब सेहत और घर दोनों के लिए अच्छी नहीं है?
2: जब तू शराब पीती ही नहीं है तो तुझे क्या पता कि शराब सेहत और घर के लिए अच्छी होती है या नहीं? अरे शराब पीने से जहाँ सेहत बढ़ती है वहीं घर में प्यार भी बढ़ता है, समझी तू?
1: सिर्फ ऊपर ऊपर से ही ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, भीतर ही भीतर तो शराब ही इन्हें खोखला बनाती है।
2: ये तेरा वहम है सरिता, पीने से आदमी अपने में रहता है और असीम शांति और मस्ती का एहसास रहता है।
1: अच्छा, तो क्या शराब इतनी अच्छी चीज है?
2: तो फिर तुझे क्या पता, तभी तो मैं पीता हूँ।
1: अच्छा, तब तो फिर शराब मुझे भी चखनी पड़ेगी कि क्या वाकई में शराब इतनी अच्छी है।
2: अरे छोड़, क्यों मजाक करती है? शराब और अब चखना तेरे बस की बात नहीं, इसे तो मर्द ही पी सकते हैं, मर्द। अब जाने दे मुझे, मेरा टाइम हो गया।
1: बस चले फिर शराब का गुणगान कर शराब पीने। आज 2 दिन हो गए इन्हें ऑफिस से छुट्टी लिए, अब बैठेंगे जाकर अपने शराबी दोस्तों के बीच। ठीक है, तुम कहते हो ना कि शराब चखना मेरे बस की बात नहीं, तो अब मैं भी इन्हें शराब चख कर ही बताऊंगी।
3: तो क्या मम्मी तुम भी शराब पियोगी?
1: बस अब तू देखती जा बेटी कि मैं क्या करती हूँ।
2: रश्मि, क्या हुआ है तेरी माँ को, ये इस तरह झूम क्यों हो रही है? इसकी तो आंखें भी बंद है।
3: कुछ नहीं पापा, शायद मम्मी की तबीयत खराब है।
2: तबीयत खराब है? जरा मुझे भी तो देखने दे। हैं, शराब की बदबू। रश्मि, तेरी माँ की हिम्मत कैसे हुई शराब पीने की? कहाँ से आ रही हो तुम दोनों?
3: हम लोग वो सिरे वाले महेश अंकल के यहाँ से आ रहे हैं। पापा आप भी तो शराब पीते हैं, आप तो रोज शराब पीते हैं। अगर आज मम्मी ने शराब पी ली तो क्या हुआ? आप ही तो कहते हैं कि शराब बहुत अच्छी चीज है, तो आज मम्मी ने पी ली।
2: चुप रहे नादान लड़की।
3: मैं अब सब समझने लगी हूँ पापा, ना समझ नहीं रही मैं, बारहवीं में पढ़ती हूँ।
2: मगर इसे तो देख किस तरह से नशे में धुत है ये तेरी माँ, इसे शराब मिली कहाँ से?
3: वो सिरे पे रहने वाले आपके दोस्त है ना महेश अंकल,
2: हाँ?
3: मम्मी और मैं उनकी बीबी यानी कि आंटी से मिलने गए थे, वही मम्मी ने फ्रिज में महेश अंकल की शराब की बोतल देखी और आंटी से मांग कर कुछ शराब पी ली, आंटी ने भी पिया।
2: अरे महेश की औरत पिए तो पिए, इसे क्या जरूरत है शराब पीने की, हालत देख ले इसकी, बेहोश है ये बेहोश।
3: तो क्या पापा, जब आप भी पीकर आते हैं तब आप भी तो ऐसे ही बेहोश रहते हैं।
2: मगर ये तो अब मेरे लिए मुसीबत बन गई।
3: आप भी तो पीने के बाद मम्मी के लिए मुसीबत बन जाते हैं, आज मम्मी आपके लिए मुसीबत बन गई तो क्या?
2: मैंने भी कहां इसे शराब चखने की बात कह दिया, अब क्या करूं?
3: कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी भी कुछ नहीं करती और आप दूसरे दिन होश में आते हैं, कल सुबह मम्मी भी होश में आ जाएगी।
2: तेरी माँ ने तो कमाल कर दिया, आज पैसे ना होने के कारण मैं सूखा रहा तो ये पीकर गीली होगी। सुबह हो गई तेरी?
4: आज क्या, मेरी तो रोज ही सुबह होती है।
2: खैर मना ले अपनी, आज तेरी जिंदगी की नई सुबह हुई है, कल तो उस महेश के बच्चे की औरत के यहाँ से खूब शराब पीकर आई थी, इतनी कि पूछो मत, कल शाम से ही बेहोश थी तू, अब जाके होश आया है तेरे को?
4: मुझे तो अब जाकर होश आ भी गया, तुम्हें तो ना जाने कब होश आएगा, और भगवान जाने आएगा भी या नहीं, तुम्हारी जिंदगी तो शराब और शराब और शराब बनकर ही रह गई है।
2: ये तू क्या कह रही है सरिता?
4: ठीक कह रही हूँ मैं, शराब के सिवा और तुम्हारे जीवन में किसी और की जगह ही क्या है, न मेरी न अपनी बेटी रश्मि की।
2: ऐसा मत बोल सरिता, तुझे पता है मैं कल से कितना परेशान हूँ, तूने शराब क्यों पी, क्या जरूरत थी तुझे शराब पीने की, इतनी शराब पीने से अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा और इस रश्मि बेटी का क्या होता, इतना तो सोचा होता।
4: और तुम जो रोज शराब पीकर आते हो, तुमने कभी ये सोचा कि कहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा और रश्मि का क्या होगा? बोलो बोलो, मेरा एक दिन शराब पीकर आना तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया, और तुम जो रोज मेरे लिए मुसीबत बनकर आते हो वो?
2: मेरी बात छोड़ सरिता, मैं तो हूं ही बुरा, मगर आज तू मुझसे एक वादा कर सरिता कि आज के बाद तू कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगी, शराब अच्छी चीज नहीं है सरिता।
4: मगर तुम तो कहते थे कि शराब अच्छी चीज होती है, तुमने तो शराब की तारीफ के कई कसीदे पढ़े थे।
2: मैं गलत था सरिता, सचमुच में शराब अच्छी चीज नहीं होती, अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है सरिता, पीने के बाद आदमी गुस्सा भी तो करता है, नाली में गिरता है, गाली देता है, झगड़ा करता है। नहीं सरिता, शराब में कोई अच्छा ही नहीं है, शराब को अच्छा कहना तो पीने का सिर्फ एक बहाना है, बहाना।
4: तो फिर वादा करो कि आज के बाद तुम कभी शराब नहीं पियोगे।
2: मैं वादा करता हूँ सरिता कि आज के बाद कभी शराब नहीं पियूंगा।
3: वाह पापा, ये हुई ना कोई बात।
2: मगर सरिता तुझे भी एक वादा करना होगा कि तू अब कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगी।
3: अरे पापा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कल क्या मम्मी ने सचमुच शराब पी थी? अरे पापा, मम्मी ने तो प्लान बनाकर महेश आंटी से शराब मांग कर अपने ऊपर छिड़क ली थी, और आपके सामने पूरे समय शराबी की एक्टिंग करती रही ताकि आप शराब छोड़ने का वादा कर सकें, और मम्मी का प्लान कामयाब भी हो गया।
2: तो क्या सरिता सचमुच तुमने शराब नहीं पी थी?
4: नहीं, रश्मि ठीक कह रही है, और मुझे खुशी है कि आज तुमने शराब छोड़ने का वादा किया है। सचमुच आज मेरे जीवन में एक और सुबह आई है, जीवन का नया अर्थ लिए।
0: एक और सुबह, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी, इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, मेरी इक्का और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।